0: Welcome back. You're watching NDTV. I'm Samiksha Srivastava. On to quick news break. This is coming in from Patna, where former Patna municipal councillor has been shot at by unidentified assailants. Former Patna municipal councillor was shot by unidentified assailants at his house. This is last evening when he was shot at. Around 7:30 p.m. In Buddha Colony police station area. So, absolute breakdown of law and order situation. This is in Patna, and what's more shocking is the fact that this is in the police station area, in that vicinity. Statement also coming in, a reaction, I guess. Let's listen. In
1: the session of लगातार जो है लोगों को गोलियां मारी जा रही है. कोई भी बिहार में सुरक्षित नहीं, कोई भी सुरक्षित नहीं है बिहार. दिन दहाड़े घर में घुस करके जो है गोलियां मारी जा रही है.
2: भाई भाई साहब थोड़ा नीचे.
1: चाहे बच्चियां हो, चाहे ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है या जनप्रतिनिधि है, तो आप समझ सकते हैं जब पटना जो राजधानी शहर है, जब वहां के जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित
3: है. तरह से अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, ये दिखाता है कि सरकार के हाथ में कुछ ज्यादा है नहीं. सरकार के अपने राजनीतिक खींचतान की वजह से बिहार में अभी फुल टाइम डीजीपी भी नहीं है. डीजीपी छुट्टी में है और कोई दूसरा आदमी प्रभार में है. और सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के तौर पर आज कहें कि रील नहीं बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्राइम कर दीजिएगा, बच जाइएगा, रील नहीं बनाइएगा. तो आज के अपराधियों ने उनसे सीख ली होगी कि मार के निकल गए लेकिन रील नहीं बनाया. अब बताइए, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि रील बनाया इसलिए फंसा, क्राइम किया इसलिए नहीं फंसा है. दुर्भाग्य है कि जिस राज्य में जनता ने जंगल राज के डर से उसको रोकने के लिए वोट दिया है, वहां पर जंगल राज के जमाने से भी ज्यादा भय का माहौल है.
0: एंड गेटिंग अस मोर ऑन दिस इज सोमू आनंद जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम पटना. सोमू, गिव अस मोर, एनीथिंग नोन सो फार अबाउट द अटैकर्स. दिस इज द पर्पेटेड फुटेज, वी बिलीव दैट इज ऑल्सो गोइंग वायरल. वॉट इज नोन सो फार इन टर्म्स ऑफ द स्टेटमेंट कमिंग इन फ्रॉम द पुलिस एज वेल एज वॉट इज सीन इन दिस स्पेसिफिक सीसीटीवी दैट हैज सर्फेस्ड?
4: देखिए, जो डिटेल्स मिल रही है उसके मुताबिक जो तीन आरोपी आए थे वहां पर जो फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं, उनमें से दो लोगों ने फायरिंग की है. बताया जा रहा है कि अनिल क्वारियर ने उनकी पहचान कर ली है और उन्होंने पुलिस को इन शूटर्स के बारे में बताया है. इनमें से एक शूटर ऐसा है जिसकी गिरफ्तारी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश से हुई थी और उसके बाद में वो रिहा होकर के बाहर आया था. अभी जो डिटेल्स मिली है उसके मुताबिक आपसी विवाद, खासतौर पर जमीन के मामले से जुड़ा हुआ विवाद हो सकता है, ऐसा पुलिस को लग रहा है. इसके साथ साथ अब पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है. अनिल यादव जनसुराज के कार्यकर्ता थे, इसलिए प्रशांत किशोर तुरंत वहां पर पहुंचे और उन्होंने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक सवाल उठाया. उसके साथ साथ तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे, तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी. और इस बीच में सरकार पर अभी फिर से दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है. घटना के बाद अब पटना में यह घटना हुई है तो लहर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. जी,
0: all right, so we leave it at that. For now, we switch focus to the latest that we are tracking on Asian Games.

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। द बिगेस्ट डिफेंस लाइनअप, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ, नेवी चीफ एडमिरल स्वामीनाथन, एयर मार्शल तेजपाल सिंह, इंडिया'स टॉप मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक माइंड्स ऑन वन मेगा प्लेटफॉर्म, एनडीटीवी डिफेंस समिट 27 सितंबर, न्यू दिल्ली। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है,
2: कुछ इससे भी अनु

0: Welcome back. Well, Asian athletes have dominated the women's 48 kilogram and 49 kg weight divisions for 25 years, winning 27 of 30 Olympic medals and holding all world records. And so the desperation for an Asian Games medal is understandable for India's Mirabai Chanu. With a silver medal in her hand now, she says it feels like life is complete. She's won a silver in the women's 49 kg category in Asian Games, completing her collection of major medals. She's also become India's first Asian Games weightlifting medalist since Karna Maleshwari won a silver in Bangkok in 1998. My colleague Rika Roy has exclusively spoken to her. Listen in.
1: We are joined by Olympic silver medalist and now Asian Games silver medalist Mirabai Chanu and her legendary coach Vijay Shekhar Sharma. Both are legends. Meera, मैं आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन्स दूंगी और ये पूछूंगी कि आपके पास ओलंपिक मेडल है, एशियन चैम्पियनशिप का मेडल है, लेकिन फिर भी आपने कहा ये सबसे बड़ी मेडल आपके लिए थी, क्यों?
2: हाँ, ये हमारी मेरा सपने भी थे और सर का भी सपने थे, मतलब वेट लिफ्टिंग पूरा टीम की सपने थे कि एशियन गेम्स में मेडल। हर एशियन गेम्स में मैंने तैयार किया है, पर कुछ ना कुछ होते थे। लास्ट टाइम फोर्थ पोजीशन थे और 14 में मैं 9th पोजीशन, और इंजरी होते थे स्टेज के ऊपर, तो हम कुछ ना कुछ करके, मेरा ये एशियन गेम्स के ही मिस था मेडल। तो इस बार हम कोशिश किया था पूरा कि इस बार कुछ भी हो जाए मुझे मेडल लेना ही है, इंडिया के लिए और वेट लिफ्टिंग के लिए और मेरे खुद के लिए भी, क्योंकि मैं ये जब से मैंने स्पोर्ट्स में कदम रखा है वेट लिफ्टिंग में, तब से मेरा सपना था कि एशियन गेम्स में मेडल जीतना। तो ये मेडल ओलंपिक के बराबर होते हैं, तो ये मुझे बहुत ज़रूरी थी।
1: सर, आपसे पूछूंगी, नॉर्थ कोरियन जो लिफ्टर थे मीरा के फील्ड में आज, वो एक डिफरेंट लेवल में लिफ्टिंग कर रहे थे, एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पे आपको लगा कि हम गोल्ड के लिए नहीं, सिल्वर के लिए स्ट्रेटेजाइज करेंगे?
3: देखिए, ये चीज़ हमें पहले से पता थी कि हम कहाँ लड़ सकते हैं, हमें नॉर्थ कोरियन लिफ्टर की लिफ्टिंग के बारे में अच्छे से जानकारी थी, तो हम लोग पहले से तैयार थे। हमारा एम था मेडल, तो उसके लिए हम पहले से आश्वस्त थे कि हम सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की फाइट करेंगे, क्योंकि वो लड़की हमारे से काफ़ी स्ट्रांग है, तो हमने उसके बारे में विचार ही नहीं किया। हम तैयारी जो प्लानिंग कर रहे थे वही सिल्वर मेडल की फाइट के लिए कर रहे थे और हम उसमें कामयाब हुए।
1: मीरा, आपके पास अब सारे मेडल्स हैं, ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, एशियन चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, अब किस चीज़ के लिए लड़ोगे?
2: अभी फिर पूरा कोशिश करूँगी एलए में भी मैं फिर से मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए। फिलहाल अभी के लिए तो ये मेडल के लिए मैं इंजॉय करूँगी, बाकी इंडिया जाके मैं सर से डिस्कस करूँगी हमको क्या करना है।
1: आपने बोला था कि मेडल ना लेके मणिपुर वापस नहीं जाएंगे, अब जब मणिपुर वापस जाओगे तब क्या करोगे, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग ऑन योर माइंड?
2: सबसे पहले तो मैं गेम्स की बात भी कर नहीं गई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए और बहुत कम टाइमिंग भी थे, पर इस बार मुझे भी खुद पता नहीं मैं क्या क्या करूँगी। सबसे पहले तो मैं फैमिली के साथ टाइम मतलब देना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं मेडल लेके जाते हैं तो सबसे पहले फैमिली के साथ ही, क्योंकि कितना सालों से हमने घर से दूर

0: मीरा आपसे पूछूंगी, क्रूज शिप में रहने का क्या एक्सपीरियंस था आपका?
1: हाँ, बहुत अच्छा
0: है
1: जी, बहुत अच्छा लगा कि हम भी फर्स्ट टाइम है ये, हम बहुत दूर से देखते थे कि ये सब कब जाओगे, मतलब सपने ही नहीं थे कि हम इसमें जाने का, तो इस बार एक क्रू में हमको रहने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, बहुत हर प्लेयर्स को बहुत अच्छे से रहते हैं।
0: अच्छा एक आखिरी सवाल, मणिपुर के रोशबीना देवी भी फाइनल वुशु के फाइनल में हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे?
1: हाँ, सिर्फ रोशबीना ही नहीं, पूरा इंडिया के एथलीट को मैं, कंटिजेंट को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी कि अपना जो इंडिया से जो भी आपने मेहनत करके आई है उसको पूरा अभी दिखा दीजिए कि हम जो भी चाहते हैं तो वो बिल्कुल हम करेगी तो मिलेगा, पर आप लोग बहुत मेहनत कीजिए और मेरे तरफ से सबको, इंडिया का जो भी कंटिजेंट है, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, पूरा जोर लगा दीजिए।
0: थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मीरा, एंड विशिंग यू अ गोल्ड मेडल इन LA ओलंपिक्स आफ्टर दिस।
2: Voices that redraw boundaries.

0: principal, with in fact even officials of this very area.
1: All right, on that note, Prime Minister Modi is interacting with participants of the Seva Yatra through video conferencing as a group of bikers travel from Vadnagar to Varanasi. Let's listen in to what's happening as the Prime Minister interacts with participants.
2: एकदम भावुक हो गए और उन्होंने बोला कि माँ लाडली योजना है उनका जो मध्य प्रदेश में भी चल रही है उनका जो पैसा है अकाउंट में सीधा मिल रहा है यानी कि उनको जो पहले दिक्कतें हो रही थी 20 साल पहले 12 साल पहले तो अभी वो कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है और एक ही परिवार को अलग अलग योजना का लाभ मिल रहा है जिनसे वो परिवार बहुत ही बहुत खुश है और वृक्षारोपण से भी उन परिवार को लगा कि जो युवा है वो इस तरह सेवा करके हम सबके साथ ही जुड़ा हुआ है।
3: चलिए आपकी पूरी टोली का स्वास्थ्य ठीक रहे, आप यात्रा बहुत अच्छे ढंग से करें और मेरी काशी जब पहुंचे तो मेरी तरफ से भी प्रणाम कर देना काशी की धरती को।
2: जी सर, जी सर।
3: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए अगले कौन सज्जन है हमारे साथ, कौन बात करेगा?
4: जी माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम इस पंक्ति में अंतिम जो हमारे सेवा यात्री का अनुभव कथन है इसलिए हम देवास से श्री दीपेश गोटी जी उनको मैं निमंत्रित करूंगा कि वे आए और माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपना अनुभव कथन रखें।
5: माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा राम राम।
3: राम राम।
5: मैं दीपेश गोटी मध्य प्रदेश देवास से।
3: बताइए अब अपनी यात्रा के संबंध में अपने खुद के अनुभव जो मर्जी पड़े बता दीजिए मुझे, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, अपनी मर्जी से बता दीजिए।
5: मैं वडनगर से काशी की यात्रा में जब निकला
3: आप तो कहां से हो?
5: बहुत अच्छा अनुभव मिला।
3: आप कहां से हो दीपेश?
5: मैं मध्य प्रदेश शाजापुर जिले से।
3: हाँ बताइए।
5: मैं जब वडनगर से काशी विश्वनाथ की यात्रा में निकला तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला। मैं जगह जगह सेवा कार्य किए और जगह जगह सेवा कार्य किए, स्वच्छता और वृक्षारोपण किया मैंने।
3: अच्छा, आपके साथ जो लोग हैं अन्य राज्यों के, उनसे कुछ सीखने को मिला क्या?
5: जी उनसे भी कुछ भाषा सीखने को मिल रही है, कोशिश कर रहे हैं हम के उनकी जो भाषा है मातृभाषा है जो भी है हम उनको अपनाने का प्रयत्न करें, मतलब सीखने का प्रयत्न करें।
3: अच्छा, सेवा का काम जब करते हैं तो लोग जुड़ते हैं कि आप अकेले अकेले करके चले जाते हैं?
5: नहीं नहीं, जुड़ते हैं, गांव के लोग जुड़ते हैं, युवा जुड़ते हैं, बुजुर्ग लोग जुड़ते हैं, माता बहनें जुड़ती है।
3: नहीं, बाद में वो क्या करते हैं? कभी कोई कुछ लोग कहते होंगे भाई आप भूखे होंगे, आइए जरा हमारे यहाँ खाना खाइए, रात में ठेले वाला होगा तो कहता होगा नहीं नहीं भैया चाय पी के जाइए, ऐसा कोई समाज का अनुभव आता है क्या?
5: बिल्कुल, मैं एक गांव में गया था मध्य प्रदेश के, वहां मुझे मैंने कार्य किया था, उस कार्य के बाद मुझे एक बुजुर्ग माता है उन्होंने मुझे घर पे भोजन करने का निमंत्रण दिया था, मैं खुद घर पे जाके मैंने भोजन किया उनके और मुझे आपको आशीर्वाद भी दिया उन्होंने कि प्रधानमंत्री आवास से उनके घर पे कुछ लोग ही नहीं है, प्रधानमंत्री आवास से उनका घर बना उसके लिए आपको भी धन्यवाद दिया है।
3: अच्छा, ये रास्ते में जितने नौजवान मिलते हैं उनका मोबाइल नंबर लेना, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, उनको अपने साथ यात्रा के दरमियान तय कि भाई मैं कम से कम 5,000 लोगों को नमो ऐप से जोड़ूंगा, हम यात्रा के दरमियान कम से कम 5,000 लोगों को मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, ऐसा कुछ आपकी टोली कर सकती है क्या?
5: नहीं बिल्कुल, हमारी टोली ऐसा कर भी रही है और हम लगातार नंबर ले भी रहे हैं, कुछ 500 प्लस नंबर हम ले चुके हैं, ग्रुप बना चुके हैं, इसके माध्यम से सब लोगों को
3: ये सारे फोटो वगैरह भेजे क्या उनको?
5: बिल्कुल, हम शेयर कर रहे हैं उनको लगातार
3: और वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं
5: जो रोज दैनिक काम। हाँ, हमने कॉल करके भी बताया उन्हें कि ये आप व्हाट्सएप इंस्टा पे भी शेयर करें और आपके जो परिचित लोग हैं उनको भी शेयर करें।
3: अच्छा,
1: All right, on that note, let's turn our attention to the big story we're tracking this morning. The political fight over the election

0: Commission has now moved from the voter rolls to the future of the Chief Election Commissioner himself. Opposition parties are demanding the removal of CEC Gyanesh Kumar after an Indian Express investigation reported that election commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi recorded at least 14 formal objections over 10 months, including over changes to Form 6, access to electoral roll databases, voter deletions, and the handling of appeals in West Bengal. So now the Congress is demanding a special parliament session to take up a motion to remove Gyanesh Kumar. In fact, several other opposition leaders, including M.K. Stalin, are also seeking Gyanesh Kumar's removal from the CEC post, including opposition leaders like Mamata Banerjee, Tejaswi Yadav, Arvind Kejriwal, also demanding re-poll in states where elections were recently held. You know, the most serious part of this report is not that the commissioners disagreed. Disagreement, as you and I know, inside a constitutional body is not by itself evidence of wrongdoing. The question is whether the two commissioners were, as reported, being kept out of decisions they were constitutionally expected to participate in, and what happened after they formally raised those objections. The Election Commission has pushed back, saying differing views and operational queries are part of normal deliberations, and that all decisions of the full commission over the past year, including those relating to the special intensive revision of electoral rolls, were unanimous. But the opposition is now using these disclosures to question the credibility of the electoral process and is demanding removal of the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar. Listen in to these crucial political reactions we've lined up for you.
1: माननीय सीसी ने सिर्फ देश को भ्रमित नहीं किया, उन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों को सिर्फ आघात नहीं दिया, जो कि बहुत अरसे से वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने खुद के कॉलीग्स को भ्रमित किया।
2: इफ द इलेक्शन कमिश्नर हिमसेल्फ इज नॉट ओनली अवेयर ऑफ इट बट ही इज अलाउइंग इट टू हैपन देन इट इज ए वेरी वेरी सीरियस असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी इट इज एक्चुअली इट इज ट्रेचरी विद द नेशन इट इज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन
3: इफ द टू इलेक्शन कमिश्नर्स were repeatedly objecting to each and every decision which was being taken with regard to the special intensive revision of electoral rolls, and the revision still continued to go on. This means that there is an invisible hand beyond the election commission which seems to be running the commission.
4: One-sided action from the Election Commission of India, which India never seen. He has no authority to continue for a minute at all. He should resign immediately.
5: Election Commission, किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे? ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है. ये हमारे लोकतंत्र को हम कमजोर करने की कोशिश है. जो निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन है, वो भी निष्पक्ष नहीं बची.
6: ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए. और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाए.
7: कि चुनाव आयोग एक पुतली है जिसका इस्तेमाल करके भाजपा सत्ता में हर राज्य में आ रही है फर्जीवाड़ा करके, और बिहार और बंगाल का चुनाव फर्जीवाड़ा था, यहाँ पुनः चुनाव होना चाहिए.
8: যে যে রাজ্যে এসআইএর নামে দখল করে ইভিএম মেশিন ক্যাপচার করে হাইজ্যাক করে গণেশ কুমার স্টেটগুলোতে জিতেছে, সেই স্টেটগুলোতে আবার নতুন করে পুরনো লিস্টে ভোট দিতে হবে, ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে.
9: দিজ আর অফিসিয়াল ডেলিবারেশনস বিটুইন থ্রি ইলেকশন কমিশনার্স. হোয়াট উই গ্যাদার ফ্রম মিডিয়া, কই ভারতীয় জনতা পার্টি যাকে চিঠি নেই পড়তি হ্যায়. मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है. कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल. दे आर इन फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफकोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री. 20 विधानसभा सीट जहां पे सर्वाधिक वोट डिलीट एसआईआर से हुए, वहां सर्वाधिक जीत टीएमसी की हुई. कांग्रेस भी एक सीट जीती, भारतीय जनता पार्टी 6 सीट ही जीती है.
10: तुरंत इस कानून को असंवैधानिक का दर्जा देना चाहिए, इस कानून को हटा देना चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। अगले सत्र क्या स्पेशल सेशन बुलाकर उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेना चाहिए।
11: ये आज से नहीं, ये सरकार के सुनियोजित तरीके से हिंदुस्तान की मतदाता सूची पे ये जो दखल अंदाज करने लगे हैं, छेड़खानी करते हैं, ये सबसे पहले उजागर हम लोगों ने ही किए थे। लेकिन उस समय हमारी बात को हो सकता है सत्तारूढ़ पार्टी मजाक उड़ाने में उस समय सफल रही, मजाक उड़ाना शुरू कर दिए थे। लेकिन आज क्या हुआ, फिर ये सवेर सच्चा तो जगर हुई है ना, दूध और पानी की मिलावट तो अलग हो चुकी है, दूध के दूध पानी के पानी।
12: I think it opens a lot of questions. We have had persistent complaints about the way in which the election commission has functioned. Before SIR became an issue for the rest of the country, for us delimitation was an issue. We believed that the process was opaque, the process was flawed, and the entire process was designed to benefit one political party and its friends. Given what has been shown, the internal sort of divisions within the election commission, clearly, wo kehte hai na, dal mein kuch kala hai.
0: All right, let's turn our attention to the latest we are tracking on The Breakfast Show. The FIR now gives us a much clearer account of what happened inside that Greater Noida-bound bus before it was engulfed in flames. According to the complaint, around 30 to 35 passengers were on board when near kilometer 33 of the Yamuna Expressway, passengers alerted the driver and conductor after noticing a burning smell. The allegation is that the bus was not stopped immediately. Soon after, flames were seen emerging from the area near the driver's seat. The fire spread rapidly and smoke filled the passenger compartment. In fact, the FIR says several passengers were trapped and those with severe burn injuries, they were taken to Kailash Hospital in Jewar, where 9 people were declared dead. For more on this deadly accident, we'll go across to Ishika. First, listen in to the crucial reactions that are just...
13: रात्रि में लगभग 11:15 बजे ये घटना घटी थी और ये ऐसी स्लीपर बस थी जो दिल्ली से महोबा के लिए जा रही थी और इसमें जो प्रथम दृष्टया बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से इसमें आग लगी और लगभग इसमें 35 यात्री सवार थे। अभी जो सूचना प्राप्त हुई है 9 लोगों की इसमें दुखद मृत्यु हो गई है और बाकी कुछ लोग घायल थे। जो घायल थे उन लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जो है इनको महोबा भेज दिया गया है विशेष वाहन से और एक महिला है जिसका अभी उपचार चल रहा है आरोग्य अस्पताल में। जिनकी मृत्यु हो गई उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम और उनके परिजनों से संपर्क करके जो है कार्रवाई की जा रही है।
14: थाना जेवर पुलिस द्वारा मृतकों के शिनाख्त का प्रयास किए जा रहे हैं। संदर्भित घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए चालक व परिचालक को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यह आग जो है बस के इंजन से स्टार्ट हुई थी, वो फ्यूल होने की वजह से अचानक से आग जो है भयानक हो गई।
0: My colleague Ishika has been tracking this case very closely. She joins us live with the latest updates. Ishika, so the FIR alleges negligence on the part of the driver and the conductor, including failure to ensure passenger safety and failure to stop the bus in time?
15: There have been glaring lapses that have now come to light. We'll first try to show you the visuals of the bus. It is being taken to the location here, which is away from the spot where we showed you how, in fact, there were items, be it the cosmetic items, which catch fire easily. Apart from it, there were, in fact, wedding invites, all of them being transported via a sleeper bus. So that is also something that is under investigation. Apart from that, it has come in the FIR that how, in fact, the passengers who were already present in the bus, they in fact had alerted the bus conductor and also the driver, but the bus was not stopped. We are trying to show you the visuals currently of the bus. This is the aftermath picture here, Parmeshwar, that we are getting you at this point in time. You will see that after you

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: unanimous in nature. Let's listen in to what the opposition has to say.
1: माननीय सीसी ने सिर्फ देश को भ्रमित नहीं किया, उन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों को सिर्फ आघात नहीं दिया, जो कि बहुत अरसे से वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने खुद के कॉलीग्स को भ्रमित किया।
2: इफ द इलेक्शन कमिश्नर हिमसेल्फ इज नॉट ओनली अवेयर ऑफ इट बट ही इज अलाउइंग इट टू हैपन, देन इट इज ए वेरी वेरी सीरियस असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। इट इज एक्चुअली इट इज ट्रेचरी विद द नेशन। It is an act of treason.
3: If the two election commissioners were repeatedly objecting to each and every decision which was being taken with regard to the special intensive revision of electoral rolls, and the revision still continued to go on, this means that there is an invisible hand beyond the election commission which seems to be running the commission.
4: One-sided action from the Election Commission of India, which India never seen. He has no authority to continue for a minute at all. He should resign immediately.
5: These are official deliberations between three election commissioners. What we gather from media, कोई भारतीय जनता पार्टी जाके चिट्ठी नहीं पढ़ती है। मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिबरेशंस हुए हैं, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल। दे आर इन फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफ कोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। 20 विधानसभा सीट जहां पे सर्वाधिक वोट डिलीट SIR से हुए, वहां सर्वाधिक जीत TMC की हुई। कांग्रेस भी एक सीट जीती, भारतीय जनता पार्टी 6 सीट ही जीती है।
6: इस कानून को असंवैधानिक का दर्जा देना चाहिए, इस कानून को हटा देना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। अगले सत्र क्या स्पेशल सेशन बुलाकर उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेना चाहिए।
7: ये आज से नहीं, ये सरकार के सुनियोजित तरीके से हिंदुस्तान की मतदाता सूची पे ये जो दखल अंदाज करने लगे हैं, छेड़खानी करते हैं, ये सबसे पहले उजागर हम लोगों ने ही किए थे। लेकिन उस समय हमारी बात को हो सकता है सत्तारूढ़ पार्टी मजाक उड़ाने में उस समय सफल नहीं, मजाक उड़ाना शुरू कर दिए थे। लेकिन आज क्या हुआ, फिर ये सब सच्चा तो जगह हुई है ना, दूध और पानी की मिलावट तो अलग हो चुके हैं, दूध के दूध पानी के पानी।
8: थिंक इट ओपन्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। वी हैव हैड परसिस्टेंट कंप्लेंट्स अबाउट द वे इन विच द इलेक्शन कमीशन हैज फंक्शन। Before SIR became an issue for the rest of the country, for us delimitation was an issue. We believed that the process was opaque, the process was flawed, and the entire process was designed to benefit one political party and its friends. Given what has been shown, the internal sort of divisions within the election commission, clearly jo kehte hai na dal mein kuch kala hai.
0: My colleague Aishwarya Jain is joining us in order to get us more details on this. Aishwarya, while the BJP is saying that deliberations are part of democratic functioning, that is what the BJP has said in this regard, but when we talk about the kind of reactions that are coming about, the sharp reactions from the opposition demanding the scrutiny of the Election Commission's decision-making process and also questioning the functioning when it comes to CEC, Gyanesh Kumar. So they're not just demanding his removal, but they're also demanding re-elections in the state, so that have already conducted the exercise.
9: Well, that's one of the demand of Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal after the entire expose came into light. Political confrontation has grown as far as the entire investigation by Indian Express over not

0: on a same page as far as three election commissioners are concerned. You know, there has been Bharatiya Janata Party who has been saying that this is good for a healthy democracy. It's a multi-member commission which can have different views, different observations. But as far as decisions are concerned, all the three election commissioners are on the same page. If they go ahead without any, without any dissent, then certainly the opposition parties might have said that they are just following the path of the political party which is in power. But yes, this is democracy, and every one in a multi-member commission should have a right to say its own words. But several opposition parties have demanded action against the CEC and have raised questions about the functioning of the election commission. Some opposition leaders have gone further, demanding his removal and an investigation, and also asked Supreme Court to take suo motu cognizance and step up in the matter. But there is important second side to the story as well. The election commission yesterday in a press note have rejected the suggestions that these reported objections represents a big breakthrough. The election commission's partition is that decisions relating to the SIR exercise were taken unanimously. And certainly the commission has also pointed out that internal notes, observations, technical suggestions and checks between members are a part of deliberation functioning of a multi-member constitutional body. There has been several remarks that have been made by the opposition parties. Perhaps leader of opposition Rahul Gandhi is likely to address a press conference today. He has been stating in the past as well that there is huge vote chori which is going on. On the other side, there are leaders who have also asked for re-elections in several states.
1: Right, Vaishwarya, we will keep tracking that story and coming back to you for the very latest. Moving on now is Prime Minister Modi, who has interacted with participants of the ongoing Seva Yatra. Do remember that started on the 17th of this month, marking the occasion of Prime Minister Modi's birthday, and is going to continue till the day in October when the Prime Minister became the Chief Minister for the first time 25 years ago, and which is what marks 25 years into his political career. The twin motorcycle rallies are linking his hometown, Vadnagar, and the parliamentary constituency of Varanasi, while marking 25 years of public service and 12 years of him being Prime Minister. Let's listen in to what the Prime Minister had to say.
2: हमारे यहाँ कहा जाता है पुराने जमाने में कि जब कोई यात्रा करके वापस आते हैं और अगर आप उनको प्रणाम करते हैं तो यात्रा का जो पुण्य है उसका आधा पुण्य उस व्यक्ति को मिलता है जो यात्रियों को प्रणाम करता है। तो आज मैं भी सभी सेवा यात्रियों को प्रणाम करके आधा पुण्य आपका चुरा रहा हूँ। इतनी लंबी यात्रा है और लगातार बाइक पर चलना पड़ रहा है। पहले कभी इस प्रकार से इतना लंबा मोटरसाइकिल चलाने का काम किया है क्या?
3: जी सर, किया है। हम गुजरात से जब रणुजा जाते हैं रामदेवरा, तब बाइक से इसके थोड़ा अनुभव है, लेकिन इतना बड़ा ज्यादा चलना बहुत तकलीफ की बात है। लेकिन ये जो सेवा यात्रा चल रही है, ये हमें पता ही नहीं चल रहा है सर, क्योंकि सेवा के कार्य इतने चल रहे हैं, उससे देख के जो हृदय की भावना है वो भावुक हो जाती है सर।
2: लेकिन फिर भी थकावट तो होती ही होगी।
3: थकावट होती है, लेकिन जो स्थानिक प्रशासन और संगठन के लोग हैं वो बहुत अच्छी सेवा देते हैं। जैसे कि यहाँ हरदा में हम आज उपस्थित हैं, तो हमें शाम से ही यहाँ के संगठन के लोग, यहाँ के कलेक्टर श्री सब बहुत हेल्पफुल होते हैं सर।
2: साहस, आप मोटरसाइकिल चलाती है क्या, पीछे बैठती है?
4: नहीं, हम मैं और मेरे साथी प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं और मैं प्रदेश में महामंत्री हूँ, हम दोनों बाइक चलाते हैं और कभी कभी कार में भी बैठ जाते हैं, एक दूसरे के पीछे भी बैठ जाते हैं।
2: तो आपके अंदर ये हिम्मत कैसी आई? आप मेडिकल डॉक्टर है?
4: मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ।
2: फिजियोथेरापिस्ट है। खैर, यहाँ काफी लोगों को मदद की जरूरत पड़ती होगी।
4: जी सर।
2: लेकिन किसी का सर तो दबाना ठीक है, गला मत दबाना। अच्छा, मुझे बताइए, अभी आपके यात्रा रूट पर मैंने देखा जब गुजरात से शायद आप निकल रहे थे, बहुत बारिश थी, जैसा अभी हेमंग बता रहे थे कि बहुत बड़ी हर प्रकार की सीजन महसूस हो गई है, क्या अनुभव किया आप लोगों ने?
4: जो हम गुजरात से जो निकले, जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि एक यात्रा जो थी वो गुजरात से चार जोन से शुरू हुई थी, तो मैं उसी यात्रा का हिस्सा हूँ जो सौराष्ट्र जोन से सोमनाथ से शुरू हुई थी। तो एक दिन तो ऐसा था कि हमने सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पूरी यात्रा बाइक में की और पूरे बारिश में की, तो इतना मजा आया कि किसी को ऐसा नहीं लगा कि हम लोग थक गए हैं, बट ऐसे ही लगा कि हम और भी आगे बढ़ते जाए और भी आगे बढ़ते जाए, पर किसी ने ऐसा नहीं कहा कि यहाँ यात्रा रोक देते।
1: And let's just also get you more in regard to the Prime Minister's office there, you know, putting out a message. And this is in regard to distress to hear about the loss of lives due to the fire tragedy that's taken place in a bus in Greater Noida of Uttar Pradesh. This is what the Prime Minister is saying. Condolences to those who have lost their lives. And this is...

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: माटी ने वंदे मातरम से सोए भारत का स्वाभिमान जगाया, जिसने विवेकानंद, नेताजी और टैगोर का अमर तेज चमकाया, उसी पावन धरती को अब अपनी ताकत का जलवा फिर दोहराना है, उसी पावन धरती को अभी अपनी ताकत का जलवा फिर दिखाना है। ज्ञान, कला और क्रांति की शक्ति से भारत का भविष्य सजाना है। बांग्ला जागबे, बांग्ला एगोबे, बांग्लार शक्ति, भारतेर गति। थैंक यू। जय बांग्ला, जय हिंद।
1: Truly, truly an invigorating, so impressive address from Shri Gautam Adani, chairman of the Adani Group, and the promise that he brings to Bengal is certainly our blessing. Amader shokoler uddeshe ekhon boktobbo rakhben amader
2: It's a very good project. Here, 51.75 acres new town area. The 50% of bed capacity will cater to economically weaker. Arthat 50% bed gorib manusder ke free te চিকিৎসা দেবেন যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল। ইটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট। এটা গোটা ভারতবর্ষে কোথাও নেই, এই ধরনের হাই স্ট্যান্ডার্ডের হসপিটালে 2000 বেডের মধ্যে 1000 বেড ফর পুয়ার পিপল, ইকোনমিক্যালি ফাইন্যান্সিয়ালি পুয়ার পিপল, দে উইল গেট benefit directly. It's a today is a historic day, today is a meaningful day, today is a auspicious day of West Bengal. Ekhane ar ki thakbe, healthcare facilities, super speciality hospital, technical hospital, teaching hospital, multiple centers of excellence, medical education and research, one medical college for educating future doctors, healthcare professionals and researchers of West Bengal, eastern and northeastern region also. Desh ki pradhan mantri bar bar bataya, purvodaya ka vikas nahi hoga तो 2047 में विकसित भारत नहीं हो सकता, इसलिए इट्स ए वेरी ग्रेट माइलस्टोन टुडे एंड पेशेंट एंड फैमिली सपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल मेडिटेल दैट मींस मेडिकल होटल फॉर पेशेंट फैमिलीज, पेशेंट एंड फैमिली, विश्राम गृह, residential facility for students hostel, doctor residence, supporting faculty and healthcare professional, staff quarter for nursing and technical and support personnel, development a vibrant life work learn, infrastructure and campus development, advanced infrastructure and utility system also there, medical tourism, it's a very very meaningful the medical tourism, because not only the northeastern but also the adjoining country, the tourism medical destination in Kolkata.

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। द बिगेस्ट डिफेंस लाइनअप, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ, नेवी चीफ एडमिरल स्वामीनाथन, एयर मार्शल तेजपाल सिंह, इंडिया'स टॉप मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक माइंड्स ऑन वन मेगा प्लेटफॉर्म, एनडीटीवी डिफेंस समिट 27 सितंबर, न्यू दिल्ली। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.
1: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
2: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
3: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
4: Gold rush on the field.
5: Go for glory, only on NDTV.
0: Voices that redraw boundaries.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द NDTV गोल्फ प्रो एम बिग

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द एनडीटीवी गोल्फ प्रोग्राम बिगिंस हियर। बिगर बोल्डर टीइंग ऑफ अक्रॉस इंडिया। द कोर्स ऑफ चैंपियंस। द कन्वर्सेशन ऑफ लीडर्स। The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi. Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
6: The biggest defense lineup. Defense Minister Rajnath Singh, Defense Secretary Rajesh Kumar Singh, Chief of Defence Staff, General N.S. Raja Subramani, Army Chief, General Dheeraj Seth, Navy Chief, Admiral Swaminathan, Air Marshal Tejpal Singh, India's top military and strategic minds on one mega platform, NDTV Defence Summit, 27 September, New Delhi.

0: इस वक्त है रोशी बिना देवी, जिन्होंने वुशु के 60 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल लाया है। रोशी, पहले सबसे पहले अपना मेडल दिखा दो एनडीटीवी के दर्शकों को। वेरी प्राउड मेडलिस्ट, दो दो बार उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है एशियन गेम्स से। रोशी, हमें बताइए कि जब आप एशियन गेम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो दौड़ आसान नहीं था आपके लिए। मणिपुर में काफ़ी वायलेंस चल रहा था, शायद आपके पेरेंट्स पहरा दे रहे थे बाहर आप जब ट्रेनिंग कर रहे थे, थोड़ा उस वक्त के बारे में बताइए।
1: हाँ, कोई मतलब आसान नहीं था, क्योंकि बीच बीच में मतलब हम लोग का मणिपुर अभी पीस नहीं है, तो डिस्टर्बेंस होता है सभी, बस नॉट ओनली स्पोर्ट्स, एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है बीच बीच में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर पीस होगा तो आने वाला जो भी अपना जो जो प्रोफेशन में है, खिलाड़ी हो, आर्ट एंड कल्चर, ये सब में आगे बढ़ पाएंगे और इंडिया के लिए मतलब और नाम कमा पाएंगे, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ।
0: आपको लगता है अब जब आपने मेडल जीता है तो पेरेंट्स ने भी इतना मेहनत की है आपके लिए, बाहर खड़े रहे घंटों भर, तो उनका भी इतना करना हैज़ फाइनली बीन विंडिकेटेड, मतलब उनके लिए भी ये अच्छा है?
1: आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू माई पेरेंट्स, दे आर फार्मर, बट हमेशा हम लोग को जो भी कमियां नहीं देने के लिए लगातार मेहनत करता है, और कभी हमको ये फील नहीं होने दिया कि हम लोग के पास ये नहीं है। बहुत दोनों को बहुत क्या बोलेगा, नो वर्ड्स टू से, बहुत अच्छा हमको मतलब प्राउड फील हुआ कि मेरा मम्मी पापा ऐसे कर साल में मतलब हम लोग को सब डेडिकेट करता है। मम्मा लोग अपना खुद का मतलब कोई दूसरा ड्रेस भी तक नहीं लेके हम लोग को यहाँ तक पहुँचा पाया है, तो थैंक यू मामा बाबा।
0: तो मामा पापा के लिए क्या लेके जाओगे आप?
1: अभी तो कुछ नहीं सोचा है, अभी वो दोनों के लिए वो ले जाएगा, मम्मी को बैग बहुत पसंद है, मम्मी के लिए बैग ले जाएगा और पापा के लिए एक लॉन्ग पेन।
0: वेरी नाइस। तो आज के बाउट के बारे में हमें थोड़ा सा बताओ, चाइनीज़ खिलाड़ी के खिलाफ तुमने खेला है, गोल्ड मेडल बाउट था, क्योंकि तुम बहुत अनुभवी खिलाड़ी हो, तुमसे गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, कहाँ पर चुक गई और कहाँ आपको लगा कि मतलब चाइनीज़ आगे निकल गया?
1: हाँ, सभी होप था कि हम गोल्ड जीत पाएंगे, पर इस बार भी मैं मिस हो गया, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन थोड़ा शॉर्ट था और मेरा सेमीफाइनल में थोड़ा सा मेरा नी खिंचा हुआ था, पर इट्स अ माइनर। पर चाइनीज़ लोग का खिलाड़ी काफ़ी चेंज होता है, तो उसमें थोड़ा हमको टाइम बहुत शॉर्ट मिला उसको रीड करने में, और हम लोग का अमित सर भी पूरा कोशिश कर किया था कि उसे टेकअप करे, और हम लोग का ओजा कॉल करके अच्छा से समझाता है हम लोग, हंडू सर मतलब जैसे तुमको आता है वो अच्छा से खेल के आओ, मानता है हम शॉर्ट टाइम मिला, पर भी आने वाला में ये गलती हो गया, पर आने वाला गेम्स और भी है, उसमें हम और ज़्यादा अच्छा करें।
2: And well, this is very historic. Of course, she was called literally at the 11th hour, and here securing her third consecutive medal. This is her second silver at the Asian Games. With that, it's a wrap of this edition. News and updates with Kachi on the other side with my colleague Gargi Rawat.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्थ्य और मसाला।
4: द बिगेस्ट डिफेंस लाइनअप। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ, नेवी चीफ एडमिरल स्वामीनाथन, एयर मार्शल तेजपाल सिंह, इंडिया'स टॉप मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक माइंड्स ऑन वन मेगा प्लेटफॉर्म। NDTV डिफेंस समिट 27 सितंबर, न्यू दिल्ली।

0: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
1: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
2: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
3: Gold rush on the field.
0: Go for glory, only on NDTV. It takes years to build your competitive edge. On the golf course, it can disappear in a single stroke.
4: Because the course plays no favourites.
0: It only cares about your last shot.
5: After the grand success of the first edition, India's premier golf pro-am is back. Where the best in golf meet the finest names in business. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee-off, 3rd October. Kutub Golf Course, Delhi.
6: There is a very public disagreement at the top of the Tata Group once again. And this time it is over who should lead Tata Sons and who ultimately has the authority to decide. We will hear two sharply different interpretations of what has happened, what the law says, and where this battle goes next. Everyone in this country who tracks corporate governance, boardroom politics, India Inc., even politics, will be tracking this gladiatorial contest. Dr. Abhishek Singhvi on the one side, representing the Tata Trust, versus Harish Salve, representing N. Chandrasekharan. We start with Dr. Singh.
7: Here what has happened, unfortunately, is now you cannot have, you know, have this famous movie called Runaway Jury. You can't have a runaway board which decides things with the active disagreement of 66% shareholder, which is your second.
6: Suggested that Chandra's reappointment and the broader push, yes, to list Tata Sons are separate issues. But these are now two major fault lies running through Tata Sons, and Noel Tata has opposed both.
7: Rahul, as I said, it is a very major principle issue, a matter of principle of shareholder owner primacy. It is not about Noel Tata. He's not an individual shareholder. It is not even about Chandra. He's not an individual shareholder. It is about the primacy of a 66% collectivity called a trust. That's the shareholder owner. Now, if you were to accept the principle that a runaway jury, as the film is called, or a runaway board, was to act independently of its 66% owner, then you would have disastrous consequences for corporate governance across the country.
6: How can a board take a decision as fundamental as choosing its chairman against the wishes of a shareholder that owns two-thirds of the company?
8: There are bigger issues at play, and let's not miss the wood for the trees. The Tata Trust people have shifted focus to the board meeting instead of the real issue which is bothering them. The real issue which is bothering them is...
4: Welcome back. Some sports news now. An Indian wushu athlete, Naram Roshnabina Devi, won a silver medal in the women's 60-kilo event at the Asian Games in Nagoya, Japan. She lost the final to China's Zhang Xiao. Rika spoke to her. Let's listen in.
9: मेरे साथ इस वक्त है रोशिबीना देवी, जिन्होंने वुशू के 60 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल लाया है. रोशि, पहले सबसे पहले अपना मेडल दिखा दो एनडीटीवी के दर्शकों को. वेरी प्राउड मेडलिस्ट, दो दो बार उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है एशियन गेम्स से. रोशि, हमें बताइए कि जब आप एशियन गेम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो दौर आसान नहीं था आपके लिए. मणिपुर में काफ़ी वायलेंस चल रहा था, शायद आपके पेरेंट्स पहरा दे रहे थे बाहर आप जब ट्रेनिंग कर रहे थे, थोड़ा उस वक्त के बारे में बताइए.
10: हाँ, कोई मतलब आसान नहीं था, क्योंकि 20-20 में मतलब हम लोग का मणिपुर अभी पीस नहीं है, तो डिस्टर्बेंस होता है सभी, बस नॉट ओनली स्पोर्ट्स, एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है 20-20 में. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर पीस होगा तो आने वाला जो भी अपना जो जो प्रोफेशन में है, खिलाड़ी हो, आर्ट एंड कल्चर, यह सब में आगे बढ़ पाएंगे और इंडिया के लिए मतलब और नाम कमा पाएंगे. मैं ऐसे कहना चाहता हूँ.
9: आपको लगता है अब जब आपने मेडल जीता है तो पेरेंट्स ने भी इतना मेहनत की है आपके लिए, बाहर खड़े रहे घंटों भर, तो उनका भी इतना करना हैज फाइनली बीन विंडिकेटेड, मतलब उनके लिए भी ये अच्छा है?
10: आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू माई पेरेंट्स, दे आर फार्मर, बट हमेशा हम लोग को जो भी कमियां नहीं देने के लिए लगातार मेहनत करता है, और कभी हमको ये फील नहीं होने दिया कि हम लोग के पास ये नहीं है। बहुत दोनों को बहुत क्या बोलेगा, नो वर्ड्स टू से, बहुत अच्छा हमको मतलब प्राउड फील हुआ कि मम्मी पापा ऐसे कर साल में मतलब हम लोग को सब डेडिकेट करता है। मम्मा लोग अपना खुद का मतलब कोई दूसरा ड्रेस भी तक नहीं लेके हम लोग को यहाँ तक पहुँचा पाया है, तो थैंक यू मामा पापा।
9: तो मामा पापा के लिए क्या लेके जाओगे आप?
10: अभी तो कुछ नहीं सोचा है, अभी वो दोनों के लिए वो ले जाएगा, मम्मी को बैग बहुत पसंद है, मम्मी के लिए बैग ले जाएगा और पापा के लिए एक लॉन्ग पेन।
9: वेरी नाइस। तो आज के बाउट के बारे में हमें थोड़ा सा बताओ, चाइनीज़ खिलाड़ी के खिलाफ तुमने खेला है, गोल्ड मेडल बाउट था, क्योंकि तुम बहुत अनुभवी खिलाड़ी हो, तुमसे गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, कहाँ पर चुक गई और कहाँ आपको लगा कि मतलब चाइनीज़ आगे निकल गया?
10: हाँ, सभी होप था कि हम गोल्ड जीत पाएंगे, पर इस बार भी मैं मिस हो गया क्योंकि मेरा प्रिपरेशन थोड़ा शॉर्ट था, और मेरा सेमीफाइनल में थोड़ा सा मेरा नी खिंचा हुआ था, पर इट्स अ माइनर। पर चाइनीज़ लोग का खिलाड़ी काफ़ी चेंज होता है, तो उसमें थोड़ा हमको टाइम बहुत शॉर्ट मिला उसको रीड करने में, और हम लोग का अमित सर भी पूरा कोशिश कर किया था कि उसे टेकअप करे, और हम लोग का ओजा कॉल करके अच्छा से समझाता है हम लोग, हंडू सर मतलब जैसे तुमको आता है वो अच्छा से खेल के आओ, मानता है हम शॉर्ट टाइम मिला, पर भी आने वाला में ये गलती हो गया, पर आने वाला गेम्स और भी है, उसमें हम और ज़्यादा अच्छा करें।
4: And finally, red carpet, military band, a flyover. President Trump rolled out a welcome for Xi Jinping that is anything but standard. It is also the first time since 1962 that a U.S. president has personally greeted a foreign leader at the base. But beyond the pageantry, hard talk on Iran, Taiwan, and AI comes next, while trade truce has been extended until the 10th of January.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: NDTV, when it really matters.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
2: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
4: Across the country.
0: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Yeah. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
5: Welcome back. Another case of a tragic fire breaking out in a bus has taken place, this time in Greater Noida, and 9 people have lost their lives. This took place on the highway in Greater Noida, where a bus with over 30 passengers was traveling, and several people have now been injured in this blaze. 9 people have died. The bus driver and conductor have been caught by the police. Now, according to the FIR, and this is really shocking, the passengers reportedly informed the driver and conductor that they could smell something burning. However, they paid no heed to this complaint. The complainant has alleged that despite this, the bus was not stopped immediately. Now, Prime Minister Modi too has expressed grief over the loss of lives, announced 2 lakh ex gratia for the next of kin of the deceased, while UP Chief Minister Yogi Adityanath has condoled the deaths and directed officials to ensure that proper treatment for the injured and provide all possible assistance to the affected families.
6: Well, the very unfortunate tragedy that unfolded at Greater Noida Yamuna Expressway, where the entire sleeper tourist bus was engulfed in flames and 9 people have lost their lives. Now, we are currently present and this is the aftermath picture that we are showing you. This is the condition of the bus which had caught fire, and you'll see it's totally incinerated, and you look at the visuals, completely useless. In fact, we are showing you how, you know, if you talk about the tires also, they are gone here, and we'll try to take you inside of this bus, and here you'll see the visuals and how there are glaring lapses that are now staring directly at the authorities, you know, because if you look at this entire visuals of the bus here, the sleeper bus, here you'll see that there's a partition which in fact should not have been there, and because of which in fact the exit gates also were in fact blocked. We are showing you the inside visuals of the bus, and you can easily imagine in what condition those 35 passengers would have been when the entire bus was engulfed in flames. Now, what we are getting to know from the survivors here is that they in fact felt a burning smell, after which they had tried to alert the bus driver and the conductor, but despite their warning, the bus moved on. And after that, when there was a blast in the AC compressor, we'll try to show you the visuals also of the AC compressor, after which in fact the oil lubricant had caught fire, and then in just seconds the entire bus was engulfed in flames. And then what would have been the condition of those passengers? We are trying to show you via these visuals here. They were panicking, they were anxious, they were frightened, because there was no escape.
7: माता जी, क्या हुआ था आप बता पाएंगे? जब उस वक्त ये पूरी घटना हुई थी, उस वक्त क्या हुआ था?
8: उस वक्त तो बस वही आँख लगे सो गए थे. फिर पता नहीं किसने आवाज दी कि जल्दी निकलो, बस में आग लगी. इतनी देर तो धुआं धुआं हो गया, उसने आवाज दी, इतनी देर धुआं धुआं हो गई. बस मेरी भी दम घुटने लगी, मैं भी भागी. घर वाला तो उठ ही नहीं पाया, उसको किसी ने मौका ही नहीं दिया. पैर टूट रखा है ना उसका, तो मौका नहीं किसी ने दिया। हमें
7: जब ये आग लगी थी तब कितने लोग थे आसपास, कुछ पता है? चिल्ला चोट हुई, अफरा तफरी मची, क्या
8: हुआ? उसमें से करीब 20-25 लोग तो निकल आए थे।
7: 20-25 लोग निकल आए,
8: अंदर बताओ, मेरे ऊपर से ही गुजरे हो, मैं तो मुद्दी पड़ी थी पैरियों
7: पर। आप नीचे वाले बर्थ पे थे क्या, ऊपर वाले?
8: नीचे वाले, 4 नंबर पे। अब मैं फिर भागी जब, तो लोग पीछे से धक्का लगा।
7: कितनी देर तक आग लगी थी बस में?
8: आग तो कई देर लगती रही, दो दो करके जलती रही। मैं हिसार से चली, दिल्ली से चढ़ी थी बस में।
7: दिल्ली से आप चढ़े थे?
8: धुआं अंदर इतना भर गया कि कुछ दिक्कत ही नहीं।
7: बाहर कैसे निकले बाकी लोग?
8: धुए में, आग में, लपट में,
7: ऐसे बाहर निकले?
8: लपट जो थी वो पेड़ियों में ही थी, गेट में। वो बेचारे भाग रहे थे सारे, मैं भी पड़ी थी, सारे भाग रहे, किसी को नहीं होश था हम कहाँ भाग रहे हैं।
6: सर आपका नाम क्या है और फैमिली में आपके कौन थे जो इस बस?
9: मेरा नाम सर वोदे भारद्वाज है मैम। मेरे मम्मी पापा जा रहे थे दिल्ली से।
6: क्या हुआ था, पता कैसे चला?
9: मैम सुबह 6 बजे ना मैं लोकेशन ट्रैक करने के लिए फ़ोन उठाता हूँ, देखता हूँ लोकेशन ही नहीं है उनकी, बस की लोकेशन अनेवेलेबल दिखा रहा है, सर्विस अनेवेलेबल। जब रात को बात हुई थी 10 बजे तक, तब तो बस चल रही थी, ओके था। उसके बाद है ना सुबह उठ के सब गायब, फ़ोन किया फ़ोन स्विच ऑफ है, ड्राइवर को फ़ोन किया ड्राइवर का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, इनके टोल फ्री नंबर पर फ़ोन मिलाया, वहाँ से कोई
6: नहीं लग पाया
9: सर। टोल फ्री में नंबर मिलाया, मैं उसका रिस्पॉन्स बहुत घटिया, राजकल्पना वालों का, उल्टा सीधा बोल रहे हैं कोई। मैंने कहा आप बता दो साथ में कौन था, उसका नंबर दे दो। कह रहे हम नहीं दे सकते नंबर। मैंने कहा कम से कम मैं जान तो सकूँ मेरे माँ बाप कहाँ पे है। मैम ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दिया इन लोगों ने, कोई कोऑपरेट नहीं किया।
6: अभी आपको क्या अपडेट मिला है? अभी आपकी मम्मी यहाँ पर?
9: हाँ मेरी मम्मी ठीक है मैम, वो कूद गई थी बस से, कूद तो नहीं मतलब बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, वो गिर गई, उनके ऊपर लोग चढ़ गए, उसके बाद वो पेड़ी बजा के गिरी, वहाँ पर कुचलते हुए आँखों में लगी है, पसली भी टूट गई उनकी बता रही है, पसली भी चोट है। मेरे पापा के पैर में रोड डली हुई थी मैम, और वो इस वजह से बाहर नहीं निकल पाए, चल नहीं पाए मैम वो अंदर।
6: अभी कुछ पता नहीं चल पाया है पापा का?
9: कुछ नहीं पता चला मैम, बता नहीं रहे हैं।
6: सरकार ने अभी बस कंपनसेशन का अनाउंसमेंट कर दिया है, पर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़?
9: मैं बहुत बड़ी त्रासदी है मेरे लिए, तो मेरे तो घर में चढ़ गया, मेरे पापा भी रिटायरमेंट में, क्या करूँगा मैम उसके पैसे का, 2 लाख रुपये क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा मैं 2 लाख? मेरे पापा ने जब तक मेरे पापा थे मैं शेर था मैम, अब मैं कुछ नहीं रहा।
5: All right, a really tragic accident there and a heartbroken son weeping for his parents. Well, that's it on this edition of NDTV Newsroom. Thanks so much for watching. Goodbye.
10: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
11: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
12: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.

0: Gates. Well, as of now, the parents of Sahil, they continue to demand the arrest of Professor Dula. Meanwhile, Rahul Gandhi has also spoken to Sahil Vakore's family over the phone. During the conversation, Rahul Gandhi expressed his support for the family and assured them that he stands with them. Meanwhile, IIT Bombay has postponed its mid-semester examinations. And all these latest developments come after 54-second CCTV video of the examination hall emerged yesterday. The video shows Sahil using his phone. And this is exactly the video here in which you can see this is Sahil. He can be seen using his phone. He's looking down on his lap. And then he has that brief confrontation with Professor Dula, who is right there. He was the invigilator during the mid-semester examination there. They have a brief chat, a confrontation. Sahil hands over the phone. And then he is seen, that's Professor Dula there. And then he is seen walking out of the classroom. Meanwhile, my colleague Abhishek spoke with Sahil's parents and the advocate, and this is what they had to say.
1: लोग आपका आईआईटी के बाहर इंतजार कर रहे हैं।
2: मैं तो आईआईटी आने वाला था पहले एक डेढ़ घंटे से इन्होंने रोका है तब तक वहाँ जाना था और उधर बाद में आयोग साहब से मिलना था तो अभी आयोग साहब की तरफ भेज रहे हैं अपने को।
1: कहाँ भेज रहे हैं आपको?
2: सही आयंत्र क्या बोलते हो? ये है ना उसका, ये लीजिए।
1: मैं क्या क्या कह रहे हैं आपको, मतलब क्यों नहीं आईआईटी जाने दिया जा रहा है?
3: It is very unfortunate. Today, the parents of the Sahil wanted to go to IIT for their hunger strike. But unfortunately, police has detained here in the Bhandup area. From last 1 hour, the family as well as me, we are detained here. And now they are...
1: क्यों detained क्यों कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं?
3: No, we don't know.
1: नाली जी, पूरा देश न्याय की मांग कर रहा है. और आपको ही वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, वहाँ तमाम पार्टी के लोग हैं, मीडिया के लोग भी मौजूद हैं, कल रात से ही आपका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जो प्रमुख मांग है प्रोफेसर को अरेस्ट करने की वो हो नहीं पाई है,
2: वहाँ आना ही है उनको.
1: क्या कहेंगे आप?
4: मुझे मेरे बच्चे के लिए सिर्फ न्याय चाहिए और अरेस्ट चाहिए. वो केदार सर है और डोला सर है, उनके लिए अरेस्ट चाहिए.
1: इस तरीके का बिहेवियर जो हो रहा है कि आप माता पिता होने के बाद भी आपको जाने नहीं दिया जा रहा,
4: गलत हो रहा है.
5: समझ में नहीं आ रहा हमारे लोगों को क्यों डिटेन किया जा रहा है. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे शांततापूर्वक आंदोलन करने आए हैं, हम चाहते हैं साहिल वाकोड़े की फैमिली को न्याय मिले, साहिल वाकोड़े को न्याय मिले. और जिस तरह से हम देखते हैं कि आईआईटी में पहली बार नहीं हुआ है, ये तीसरी चौथी घटना है. यहाँ पे सोलंकी के साथ भी वही हुआ था, तब भी हमने आंदोलन किया था, उसके बाद क्या हुआ? आज वापस एक साहिल के साथ वही घटना हुई है. तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मांग ये है कि आरएसएस जो घुस गई है यूनिवर्सिटी में और ये आईआईटी में और ये जो धर्म का आजाद दीदी का जो यहाँ पे चलता है, और हमारी मांग ये है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा. ये आईआईटी में जो है मुंबई में, ये पहली घटना नहीं हुई बॉम्बे में, ये तीसरी चौथी घटना है और इसके बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. स्टूडेंट के लिए कोई सेफ गार्ड नहीं है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर चल रहे, हमने क्या किया बताइए.
6: ट्राइंग टू कैच एन इनोसेंट प्रोफेसर, ही इज एटलीस्ट इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, राइट, एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन. दे आर ट्राइंग टू पनिश हिम विदाउट इवन प्रॉपर इंक्वायरी, राइट. दे आर आस्किंग फॉर रिडिकुलस डिमांड्स लाइक दिस पर्सन शुड रिजाइन, दैट पर्सन शुड रिजाइन. यू टेल मी, यू नो, आई थिंक हियर बिफोर लास्ट.
0: All right, my colleague Saurabh Gupta joined me live from Mumbai. Saurabh, after that video which emerged last night, which clearly shows Sahil using his phone and then he stepped out of the class, Sahil's parents allege that they have been detained. But what is happening right now? Where is the probe headed to? And what perhaps can we expect as parents continue to demand Professor Dula's arrest?
7: Well, unless, of course, the police say that, you know, in their investigation, cheating or academic malpractice has been confirmed. What many are saying, and at least the Congress leaders who've been speaking to the family are saying, is that, you know, it doesn't really establish anything. That's the, well, that's one of the viewpoints. But of course, there are others who say that that is conclusive proof that there was some sort of malpractice. At this point, the parents of Sahil Vakore are here at the Sayadri Guest House, which is in South Mumbai. This is the state guest house. They've just concluded a meeting with the state's SCST commission. But earlier, before they actually got here, they were stopped by the police in Bhandup, and they were brought here with a police escort. And what the police are saying is

0: taken on the election commissioner once again. There is some sort of decoupling as far as the Election Commission of India is concerned. The entire might and the fight of Rahul Gandhi was, towards Gyanesh Kumar, the chief election commissioner. It used to happen before as well in the attacks that Rahul Gandhi so far has been doing. But it used to come with election commission. This time it's absolute decoupling, isolation of Gyanesh Kumar, the chief election commissioner. Congress leader and leader of opposition has upped the ante. Ladies and gentlemen, Rahul Gandhi repeats the vote chori charge and has also, in fact, gone ahead and said that there will be consequences. And this time, he did not stop only at the chief election commissioner. He said there will be investigation if and when the Congress comes to power against the Prime Minister and the Home Minister as well. So this is an all-out call, all-out war that we are seeing. So let's just very quickly tell our viewers what happened just a short while back. Remember, all this is at the back of the news report of the Indian Express that came out yesterday. And now Rahul Gandhi, in his press conference, he in fact came all guns blazing against the chief election commissioner. The leader of opposition has claimed that two election commissioners were aware of the problems, discrepancies in the system. And what they have done is they have, as per him, they have exposed this entire narrative of what Rahul Gandhi is saying. And he also then went on to say that, the chief election commissioner, Gyanesh Kumar, was picked by the prime minister. Allegations that they are protecting Gyanesh Kumar. Rahul Gandhi went on to say that Gyanesh Kumar should resign immediately to redeem himself. Very quickly going across at this moment, first of all, to Tuhin Sinha of the Bharatiya Janata Party to get a reaction on what Rahul Gandhi said. Tuhin, you heard what Rahul Gandhi's press conference was. All our attack, he said, no, the election commissioner will not be spared. And this time even going a step further and saying if and when the Congress comes to power, there will be investigation against the Prime Minister and the Home Minister as well.
1: Rahul Gandhi needs to realize that rhetoric and bluster cannot replace facts. You know, the 14 points on which allegations have been made against the Election Commission, the Election Commission has already replied. Point number two, the wrongdoing is not established. It seems that there were issues, there were differences with regard to procedure. And the differences with regard to procedure can happen in any organization, including a media organization, including a political party. Fact is, wrongdoing has not been established. Wrongdoing was established when Naveen Chawla the then election commissioner in 2009 had complained against Naveen Chawla both to the president and to the prime minister of the country, because there was genuine wrongdoing on the part of Naveen Chawla. In this case,
0: but Tuhin, how do we know whether there was any wrongdoing? How will it be established if, until and unless there is some sort of an investigation? Because the fact remains that these two election commissioners also wrote a letter to the chief secretary. Nobody knows what happened, what answers were given by the chief secretary, whether there was something that was looked into as far as this procedural problems that you are calling them were in fact flagged by both these election commissioners.
1: You need to understand that all three election commissioners enjoy equal power. So if two were fundamentally opposed to any decision, the decision would have been stalled there and then. Besides that, it is the election commission which has to respond, which has already responded. But our stand is very clear. Rahul Gandhi's agenda is to besmirch the reputation of constitutional bodies, which will not be tolerated. Thank you.
0: Thank you, Zuhin, for joining me with your reaction on this. My colleague Vasudha Venugopal also, in fact, joining us from the newsroom. She has been tracking the very latest, the fallout of what has happened, after the Indian Express report that came out. Vasudha, at least with Rahul Gandhi, there has been consistency as far as attacks on the Election Commission is concerned. But this time he has upped the ante a notch more as well, going on to say that the investigation will not only just be against the Chief Election Commissioner, but also dragging in the Prime Minister and the Home Minister in his attack.
2: Absolutely. It's the consistency that Rahul Gandhi spoke about, Ankit, and I think that is the biggest takeaway from his press conference today. Two important highlights. One, like you rightly said, he is seeking an inquiry not just on Ganesh Kumar, he's asking him to resign, but he's also seeking an inquiry on Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah, saying that these are the people who are protecting him. He's also said that there have been changes, tweaks to laws that have been made to protect Ganesh Kumar, and he also goes on to talk about how he appreciates the dissent letters that have been written by Mr. Sandhu and Vinit Joshi, both election commissioners. But he also goes on to take credit for this. He says that it is the relentless, addressing of the vote chori issue, that raising of the vote chori issue by the Congress party that has led to these ECs also writing letters of discord and dissent against Ganesh Kumar. So he says that it's the Congress party that's getting information from insiders within the Election Commission of India. And he said that that in some ways also answers why anti-incumbency does not hit the Prime Minister. Now, we'll have to wait and see how the BJP responds to this, because we just heard Tuhin Sinha, but the BJP will also have a formal press conference in a short while from now, because the BJP is very clear. I spoke to insiders in the BJP and they're very clear that it's not the Election Commission of India that is under attack. They feel that it's a personalized attack against Ganesh Kumar, which also means that the institutional sanctity of the organization, of the institution, is still intact, which is why the BJP feels that there is room for democracy, and that is a larger message that it wants to send out from this episode.
0: I think that's also an important point, because Ganesh Kumar has always been in the firing line as far as Rahul Gandhi is concerned. But this time there is some sort of a decoupling, only in fact focusing on Ganesh Kumar. We are getting a reaction from the Bharatiya Janata Party spokesperson. Pradeep Bhandari has called Rahul Gandhi's press conference a damn squib. Let's listen in. All right, so what he has said is that it was jhoot ki goonj, their, in fact, spin to Rahul Gandhi's chhatro ki goonj by a frustrated leader not able to win people's support through democratic means. This is what Pradeep Bhandari has gone ahead and said. He also went on to say that it's not truth that BJP has not lost since 2014. BJP has lost 20 elections since 2014. How is it possible for our Prime Minister Narendra Modi to win consecutive elections? Did the Congress under Nehru did vote chori, or was it in Rai Bareli when it's 16 times the Congress party was able to win consecutively? So this is what the reaction from the BJP is. But I want to, before I in fact go to my guests, our analysts, those who are those who have heard this entire press conference, just to try and understand where it goes from here, because this is one of the sharpest attacks. There are of course be few things that Rahul Gandhi said about anti-incumbency and all, where a lot of people would have a lot of, in fact, remarks to make. But before we do that, let's just listen in once again to what Rahul Gandhi said in his press conference today.
3: Since 1947, we have never been sitting in this place, which is that our elections are fundamentally broken. The laws that have been passed by Parliament are open to question because the vote has been destroyed. And the capture of the institutions that has taken place is also open to question. This is the first time in independent history that India is sitting in this point, at this point. What are we saying is Mr. Ganesh Kumar must resign immediately. And I would add to Mr. Ganesh Kumar, please understand, you're a highly educated person, please understand what is going on here. This thing that you have done is an act against the Indian nation. From the vote, which is supposed to be protected by the Election Commission, our constitution gets its power. From the vote, the constitution gets its power. From the constitution, our laws are made. And from our laws emerge our institutions. This is a chain. And this chain defines modern India. The thing to understand here is that if the vote has been destroyed, then our constitution has been destroyed. It no longer has its power. It no longer functions. If our constitution has been destroyed, our laws are illegal, and if our laws are illegal, our institutions are meaningless. Gyanesh Kumar was chosen by the Prime Minister of India, not by anybody less. He was chosen by Amit Shah. And now two election commissioners are saying that Mr. Gyanesh Kumar is responsible for the chaos, for the damage that has taken place to our voting system.
0: All right, so Rahul Gandhi once again reiterating his vote chori attack on the election commission, once again saying that it is unnatural in the way that the BJP keeps winning. I want to very quickly tell you, ladies and gentlemen, what are the five big attacks that Rahul Gandhi, in fact, unleashed today against the chief election commissioner. He said Gyanesh Kumar acted against India. He termed this as treason and said he will have to pay the consequences on this. CEC's protectors are sitting on the top. Also getting in the Prime Minister and the Home Minister in his sphere of attack. Prime Minister, Home Minister destroyed democratic architecture and went on to say, and this is for the first time, in fact, he said that, you know, there will be consequences. We will, if the Congress comes to power, they are going to investigate the Prime Minister and the Home Minister as well. CEC is protected from probe in the legal system. This was, in, as he said, in December 2023 within a new Parliament Act, and BJP is safe from anti-incumbency. And for Rahul Gandhi, that means the polls are rigged. These are the five big attacks that the leader of opposition has unleashed on the back of the news report that we have seen in Indian Express just yesterday. Let me very quickly at this moment, ladies and gentlemen, go across to my esteemed guests, those who are joining me at this moment. Bhupen Chaube, consulting editor, NDTV, needs no introduction, has been covering Indian politics for a very, very long time. We have Sanjay Jha. He's a political analyst who is joining us at this moment, and so is Sajjan Kumar, who keenly follows Indian politics, is an analyst who is joining me at this moment. Bhupen, let me begin with you. You know, marks to Rahul Gandhi for his consistency. He's been saying that even these letters were triggered after the Congress party and Rahul Gandhi's press conferences, trying to take the credit of that news report of Indian Express. But the fact remains that this time the attack has gone a level up. From only attacking Gyanesh Kumar, it is now gone to investigation against Prime Minister and the Home Minister as well.
4: I think, Ankit, the way to look at the BJP's response is to break it down into two parts. One, there is a substantive argument, which is a factual argument, which is being made by the Indian Express report, that two election commissioners disagreed with an opinion which was being expressed by the chief election commissioner, and that the chief election commissioner, despite their objection, did not do anything. And hence, they raised their battle one step further and they approached the cabinet secretary. The BJP's response to that is that, look, what the Indian Express as an organization is, it's the same organization which had published a report of a supposed midnight coup, and therefore the credibility of the organization is at stake. The second argument is that, is this the first time the differences have cropped up in the election commission, and there are, you know, references being given to what had happened when Naveen Chawla was the chief election commissioner, or when T.N. Seshan was the chief election commissioner? The only problem in the defense being expressed by the BJP as of now is that we have not heard from the two people who are the two fellow election commissioners, Mr. Joshi and Mr. Sandhu, who wrote these letters of complaint. We are not hearing from them if they believe that this is a complete misconstruction of what they really wanted to do.
0: Okay.
4: If this was a case where this was just
0: there is a rebuttal press conference of the BJP just has just begun. We will have to cut across to that. Sudhanshu Trivedi, member of parliament, speaking from the Bharatiya Janata Party. Let's listen in.
5: Which usually comes from some unknown, conspicuous and dubious sources, which do not know, anybody do not know. And how far his intelligence and competence can be accepted, it emerges from his first statement, jab wo kehte hain ki main 50 saal se isko dekh raha hun, jiski 56 saal ki age hai, wo 50 saal ki umar se sari cheeze samajh raha hai. Mujhe lagta hai 5-6 varsh ki aayu mein राजनीति को समझने की ऐसी अद्भुत प्रतिभा सिर्फ पक्की दाढ़ी वाले नौजवान में ही हो सकती है. सेकेंड, उन्होंने कहा एंटी इनकम्बेंसी देश का एस्टैब्लिश ट्रुथ है. और वो बीजेपी के आने के बाद हुआ है। मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से विवेक शून्य, राजनीतिक दृष्टि से ज्ञान शून्य, राहुल गांधी जी को यह नहीं पता है। यस, ये सही है, एंटी इनकम्बेंसी इज डेफिनेटली इज वेरी कंसिस्टेंट एंड स्ट्रांग अगेंस्ट कांग्रेस। भारत की राजनीति का ज्ञान नहीं, 1967 के बाद से तमिलनाडु में कांग्रेस कभी नहीं लौटी है, तब कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं था। बंगाल में 1977 के बाद से कांग्रेस नहीं लौटी है, और 77 से 2011 तक 34 साल कम्युनिस्टों की सरकार रही, और राहुल गांधी को समझ ही में नहीं आता है, दिखाई नहीं पड़ता है। अब आइए, बिहार में 1990 के बाद से कभी कांग्रेस नहीं रही है, 3 बार लगातार लालू यादव की सरकार रही है, राहुल गांधी को ज्ञान ही नहीं है। 1990 के बाद, 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में, यानी जो गांधी फैमिली का गृह राज्य था, वहां सरकार नहीं रही है, उनको पता ही नहीं है। 1999 के बाद से उड़ीसा में सरकार नहीं रही है, 25 साल लगातार बीजू जनता दल की सरकार रही है, ये पता ही नहीं है। ममता बनर्जी जी की 3 बार सरकार रही है, ये पता ही नहीं है। त्रिपुरा में लगातार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है, ये पता ही नहीं है। और एंटी इनकम्बेंसी को लेकर आ जाते हैं, डेफिनेटली जिस जमाने में कांग्रेस की भी लंबे समय तक सरकार रही है, जिस जमाने में वोटर आईडी कार्ड नहीं थे, जिस जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी, जिस जमाने में बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, जिस जमाने में गोलियां चलती थीं, उत्तर प्रदेश बिहार में तो कोई चुनाव ऐसा नहीं जाता था जब कुछ लोग मारे ना जाते हों और घायल ना होते हों, तब तक एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के लिए भी काम नहीं करती थी। जब से पारदर्शी इलेक्शन हो गए हैं, लोकल पुलिस की बजाय सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, जब से सीसीटीवी आ गए हैं, सीसीटीवी की लाइव फुटेज आती है, जब से स्वतंत्र मीडिया और स्वतंत्र जुडिशरी हो गई है, तब से उनको लाले पड़ गए हैं सत्ता में आने के। हां, यह सच है कि राहुल जी और सोनिया जी के आने के बाद कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी जी 1997 के दिसंबर में राजनीति में आई, उससे पहले कांग्रेस मध्य प्रदेश में थी, तो 98 में एक बार रिपीट हुई, फिर कभी किसी राज्य में रिपीट नहीं होती है। और राहुल गांधी जी इतने गजब के हैं, केरल में हर बार रिपीट होती थी, वो बोलने में भूल गए, मगर पिछली बार केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के बजाय कांग्रेस को आना था, वो नहीं आई, क्योंकि राहुल गांधी जी के चरण वहां पड़ गए थे। और मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, एंटी इनकम्बेंसी वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी के अंदर, इस गांधी परिवार के अंदर है, 100 साल से लगातार सत्ता में है, कांग्रेस पार्टी की सत्ता में, और आज एंटी इनकम्बेंसी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो अपनी सीट बगैर अपने सहयोगी दल की बैसाखी के नहीं जीत सकते। पिछले 25 साल से रायबरेली और अमेठी समाजवादी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस पार्टी जीतती रही है, वरना सोनिया जी राहुल जी की क्षमता नहीं है कि बगैर सपा के सपोर्ट के अपने दम पे अपनी खानदानी सीट निकाल लें। और राहुल गांधी जी वायनाड जीते और प्रियंका गांधी वायनाड जीती, मुस्लिम लीग के सपोर्ट पर जीते हैं, जहां 60-65% मुस्लिम है, क्षमता नहीं है, हैसियत नहीं है कि बगैर मुस्लिम लीग के समर्थन के अपनी सीट निकाल सके। तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी का अपना अनुभव बिल्कुल सही है, और राजनीतिक दृष्टि से उनका ज्ञान अत्यंत शून्य है, भारत की राजनीति का फंडामेंटल ज्ञान उन्हें नहीं है। अब टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। पहला सवाल कि एक न्यूज रिपोर्ट के आधार के ऊपर यह कहा जा रहा है, फिर मैं उसका तकनीकी जवाब देता हूं। पहली बात, उस न्यूज रिपोर्ट में किसी भी इलेक्शन कमीशन का कोट है, हां या नहीं? नहीं तो किस आधार के ऊपर कोई बोल रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ने यह बोला है? किसी भी न्यूज के बारे में मैं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए कहता हूं, बाकायदा संबंधित व्यक्ति को क्वेश्चन पूछा जाता है और उनका स्टेटमेंट लिया जाता है, वो स्टेटमेंट कोटेड है? नहीं। एक भी क्या कोई ऐसी आपके पास रिपोर्ट है कि सर्वसम्मत से निर्णय ना हुआ हो? नहीं। एक भी कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें तीनों कमिश्नर्स ना रहे हो? नहीं। तो इस बात का आधार क्या है? मैं सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, जिसमें किसी भी इलेक्शन कमिश्नर का कोई कोर्ट नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मेंशनड है, तो उसका आधार क्या है? और अगर इस आधार पे काल्पनिक बातें करें तो अप्रैल 2012 में उसी अखबार ने यह भी लिखा था कि कांग्रेस की सरकार इतनी डर गई थी कि सेना ही आग कब चरखे ले रही है। कैसी खारी सारी खबरों के ऊपर आप यकीन करते हैं? अब मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं, इसके बाद मीडिया से भी बहुत गहरा ताल्लुक है इनका। अखबारों की जब चीज पे जाएंगे तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के दिल में यह समस्या क्यों है। पहली बात टेक्निकल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 21(3) स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है चुनाव आयोग को कि वो कभी भी अपनी इच्छा और व्यवस्था के अनुसार SIR करवा सकता है। नंबर दो, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कोट किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1960 में जो फॉर्म 6 था उसमें कोई परिवर्तन किया गया, इस पर स्पष्ट किया गया कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उनका कहना है कि माता पिता का नाम नहीं जोड़ा गया, ऐसी मूर्खतापूर्ण बात सिर्फ कांग्रेस वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि भारत का पहला इलेक्टोरल रोल 1952 में बना, वोटिंग की एज 21 ईयर्स थी, तो 1974 तक तो माता पिता का रेफरेंस पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि 1973 तक जो फर्स्ट टाइम वोटर बन रहा होगा उसके तो माता पिता हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि सब 1952 से पहले के रहे होंगे। उसके बाद जब यह परिस्थिति आई कि बहुत सी घुसपैठियों की समस्या आई, तो 1987 में अमेंडमेंट हुआ, तब यह किसने निर्णय लिया? 2003 में अमेंडमेंट हुआ कि 26 जनवरी 1987 से पहले पैदा हुए जो भी भारत में के नागरिक हैं वो नागरिक माने जाएंगे, उनका उसमें एंट्री होगी। 87 से लेकर 2004 के बीच में जो भी लोग आए हैं उनको यह बताना होगा कि उनके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए, केवल उनसे सीधे नहीं ऐड होगा नाम। फिर उसमें एक और क्लॉज जोड़ा गया कि माता और पिता में से एक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए, मगर कोई भी एक व्यक्ति इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि लीगल इमिग्रेंट ने आके यहां के नागरिक से शादी कर ली और उसकी संतान जो है वो भारत की वोटर बन गई। ये तो 87 और 2003 के चेंजेस हैं। और फिर मैं देश से पूछना चाहता हूं, अगर आज कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि 18 साल का कोई व्यक्ति अगर आता है और वो ये कह रहा है, उससे पूछा जा रहा है और साफ साफ ये कहा गया, अगर आपके माता पिता का नाम है, परिवार के किसी सदस्य का नाम है, दादा दादी का भी नाम है, आपको कोई कागज देने की जरूरत नहीं, और उसके बाद आपको वोटिंग से जोड़ रोका नहीं जा रहा है, यह कहा जा रहा है इनमें से कोई एक कागज दे दीजिएगा। अब मैं देश से पूछना चाहता हूं, अगर 2025 या 26 में कोई 18 साल का युवा आकर यह कहता है कि वो वोटर बनना चाहता है मगर माता पिता का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्या उसे वोटर बनना चाहिए बगैर वेरिफिकेशन किए? जो यह कह रहा है वह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ सामान्य नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ पीपीटी बोला, मैं बगैर पीपीटी के पॉइंट बाय पॉइंट बोलता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव, कांग्रेस के नेताओं ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, चुनाव भारत में हो रहे थे, बांग्लादेश के अखबार में क्यों आर्टिकल लिखा गया? और उसका आधार समझ में आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत कहां से हासिल हुई? असम की धुबरी सीट से। कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते, जिनके विषय में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी कह चुके हैं कि दिस इज मिनी बांग्लादेश, जहां सबसे भारी डेमोग्राफिक चेंज हुआ है पिछले 20 से 25 सालों में, वहीं कांग्रेस ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, राहुल गांधी से तीन गुना बड़ी जीत। और राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, आप उनके एक्स और ट्विटर पोस्ट जाके चेक करिए, जब उनके प्रवक्ता करे तो लुक एट द क्राउड्स, वो कौन सा इलाका था? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, मुर्शिदाबाद, जहां सबसे ज्यादा संदेह है डूबियस वोटर्स का। और फिर हम यह भी पूछना चाहते हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने यूएस एड की, यह आप देखिए, यूएस एड की मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रोकी, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उन्होंने कहा यूएसएड भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए फंडिंग कर रहा था, It is a statement why the millions of dollars were poured by a foreign agency to increase the voter turnout in India. What they have to do with voter turnout in India? अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये माजरा क्या था. माजरा ये है कि जो लोग विदेशी वोटरों के आधार के ऊपर सत्ता पे कब्जा करने का ख्वाब रखे थे, उनके ख्वाब शीशे की तरह चूर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. वो वीडियो सबने देखा होगा कि जब इन्फिल्ट्रेटर्स वापस जा रहे थे, उन्होंने बोला है कि हम बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं. वीडियो अवेलेबल, हमने 4 बार वोट डाला है. वो वीडियो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में कि हमने 4 बार वोट डाला है. वो बॉर्डर पे खड़े होकर कह रहे हैं हमें वापस जाने दो, और अपनी लोकेशन बता रहे हैं अंदर की कि हम फला फला जगह के रहने वाले हैं. उसके बाद अगर किसी को लगता है SIR नहीं होनी चाहिए, वो देश के साथ देशद्रोह करने की बात कर रहा है. अगर बांग्लादेश के एक MP ने कहा, अख्तर हुसैन ने, कि अगर बंगाल में BJP की सरकार बन गई तो बड़ी समस्या हो सकती है, हमारे बहुत सारे लोग वापस आने लगे, क्या मतलब है इसका? इसका डेली स्टार में आर्टिकल, धुबरी की जीत, मैं हम 4 बार वोट डाल चुके हैं ये. और अब कहानी समझिए, ये जो प्रपंच शिरोमणि ने समझाने का प्रयास किया है, इसके पीछे वास्तविक मंतव्य क्या था. इसलिए जो बिल्कुल टेक्निकल बात है, उसके साथ साथ हम एक और बात पूछना चाहते हैं. स्टेट्स में भी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, स्टेट्स में भी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं. मैं चुनौती से कांग्रेस और विपक्षी दलों से पूछ रहा हूं, कितनी स्टेट्स में इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन के प्रोसेस में लीडर ऑफ द अपोजिशन इन्वॉल्व है, बताएं हां या ना. कितनी जगह चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व है, हां या ना. खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत. यहां तो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन्वॉल्व है, और महोदय को यह भी याद नहीं रहता. वो कह रहे हैं कि हमने नोट ऑफ डिसेंट दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पे. उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट बाकी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर भी दिया था, जिनको कि आज जिनके वक्तव्य को आज वो कह रहे हैं. इसी को कहते हैं पल में वो तोला है और पल में वो माशा है, करते तो तमाशा है और खुद ही तमाशा है. दूसरी बात, ये सारे विषय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाए गए. सुप्रीम कोर्ट ने SIR के सारे प्रोसेस को अपहेल्ड किया, इलेक्शन कमीशन की पूरी पावर को अपहेल्ड किया. और जिसको प्रारंभिक ज्ञान ना हो, इस इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं. अगर कोई भी 2 इलेक्शन कमिश्नर किसी भी चीज पे मतभेद रखते हैं तो वो निर्णय हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुमत से ही होना है. तो सारे निर्णय एक मत से हुए, उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि वो बहुमत से हुआ हो. अब बताते हैं कि वो कुल मिलाकर किस प्रकार का प्रपंच रखते हैं. कांग्रेस के एक नेता ने ये कहा था 2024 के इलेक्शन में कि 150 DM और कलेक्टर्स बदल दिए गए. जब उनसे इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि आप 150 बदले हुए DM और कमिश्नर्स की लिस्ट दीजिए, लिस्ट गायब हो गई, दी नहीं गई लिस्ट. अब इन लोगों के जमाने में कैसे सरकार चलती थी, मैं याद दिलाना चाहता हूं. मैं अपनी टीम से कहूंगा एक वीडियो जरा प्ले करके दिखाएं. ये वो पहले इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके पर कतरने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर लाए गए थे. जरा एक बार वो वीडियो सुनिए.
6: For us to say we are ready for the election. But the responsibility for fixing up the schedule for the election is squarely and completely that of the election commission.
5: ये किसके समय की बात हो रही है? राजीव गांधी जी के कैबिनेट सेक्रेटरी थे TN सेशन. वो कह रहे हैं कि मुझे बुलाया गया और कहा गया बता दो कि इलेक्शन कमीशन को कि इस डेट से इलेक्शन कराने हैं. तो TN सेशन, हु वाज कैबिनेट सेक्रेटरी एट द टाइम, इज सेइंग टू देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, कि उन्होंने इंग्लिश में बोला तो मैं हिंदी में बोले दे रहा हूं, महोदय ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है. हमारा अधिकार सिर्फ इतना है कि हम चुनाव आयोग से कहें कि हम चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं और तिथियों का समय का निर्धारण वो करेंगे. मगर उनसे कहा गया नहीं, आप कहिए ये होगा. मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि 6 साल की उम्र का तो आपको याद है, ये जब आप 19 साल के थे तब का नहीं याद है? अद्भुत ज्ञान संपन्न है. उनसे एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलेक्शन में ये वोट चोरी हो जाती है, आपको कब पता चला? तो आप लोग जाके देखिए, उनका 7 साल की उम्र में, 1977 में, भाई सब 7 साल की उम्र में, मुझे लगता है अगर इनकी इतनी प्रबल मेधा होती, इतनी प्रबल शक्ति होती, स्मरण शक्ति, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती जो इस प्रकार के जवाब दे रहे हो। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, जो जनता के विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों में केंद्र में और उससे पूर्व गुजरात में निरंतर जनता की सेवा करके और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई है। मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, मैंने बात बंगाल चुनाव से पहले कही थी कि वोट चोरी करते हैं बिहार चुनाव में। 2010 में किसकी सरकार थी? आपकी। इलेक्शन कमिश्नर कौन था 2009 में? आपके पर्सनल व्यक्ति माने जाने वाले नवीन चावला। और 2010 में कांग्रेस सारी सीटों पर लड़ी, 4 सीटें जीती, 3.5% वोट प्राप्त हुए, 234 पे जमानत जब्त। मतलब कहना ठीक नहीं लगता है, जिसकी 234 सीटों पर जमानत जब्त हो गई वो कहता मेरी वोट चोरी हो गई। और मैंने बात बंगाल चुनाव से पहले कही थी कि 2021 में कांग्रेस की 0 सीट थी बंगाल में, और वो कहेगी वोट चोरी हो गई। भाई तेरे पास था क्या जो चोरी हो गया? बताओ, थोड़ा कहने में अभद्र सा शब्द लगता है कि नग्न व्यक्ति नृत्य करेगा फिर कहेगा कपड़ा फट गया मेरा, सामान्य भाषा में आप लोग समझते होंगे, उस भाषा में उतर के ऊंचे लेवल पे जवाब देना ठीक नहीं है। संस्कृत निष्ठ परिमार्जित परिष्कृत भाषा में मैंने आपको बता दिया, शेष आप अपने मानस पटल पर स्वयं इमेजिन कर सकते हैं। अब इसलिए हम आपसे यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी और कान खोल के सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का जो राइज हुआ है वो 70 साल में डिकेड बाय डिकेड हुआ है, और कांग्रेस का डिक्लाइन 70 साल में डिकेड बाय डिकेड हुआ है। 1950s का डिकेड, 50 का दशक, वी वर इनसिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पार्टी। 60s का डिकेड, हम 67 में 35 लोकसभा जीते जनसंघ के, और उत्तर प्रदेश में हमारे 96 एमएलए जीत के आए, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई जगहों पर हमने अच्छी संख्या में आए, वी बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्टी, और हमने अनेक राज्यों में एसवीडी गवर्नमेंट बनाई। 70 का दशक, हम केंद्र में पहली बार सत्ता के भागीदार बने और 3 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल में। 80 का दशक, 1984 में भी, राहुल गांधी जी आपका ज्ञान शून्य होगा, मगर 1984 में वोट प्रतिशत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी थी कांग्रेस के बाद, भले ही हमारी सीटें 2 थी, 8.6% वोट था भारतीय जनता पार्टी का। 89 में हम 86 सीटें पाए। 90 का दशक, वी बिकम द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, वी हैव क्रिएटेड द यूनिपोलर पॉलिटिक्स इनटू बाइपोलर पॉलिटिक्स। 2000 का दशक, वी वर लीडिंग द कोलिशन अंडर अटल बिहारी वाजपेयी, और 2010 का दशक, वी वर हैविंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ट्वाइस एंड लीडिंग द कोलिशन थ्राइस अंडर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। क्या बात करते हैं, राजनीति का एबीसीडी नहीं पता हुआ है आपको अपने जमाने से? हम निरंतर मेहनत करते हुए आगे बढ़े हैं। आप लोग सुविधा की राजनीति करें, उसका कारण क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमीन से जुड़े हुए नेता है, और राहुल गांधी जी जमीन से उड़े हुए नेता है। वो हर दूसरे महीने में उड़कर विदेश पहुंच जाते हैं और फिर वहां से कोई ज्ञान प्राप्त करके आते हैं, और आधारहीन, तथ्यहीन, फैक्ट्स के आधार के ऊपर वह कोट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए उन्होंने एक और बात कही थी, किस तरह का टाइम भारत में नहीं आया है। बिल्कुल सही बात है, मैं राजनीतिक दृष्टि से भी कहना चाहता हूं, और दूसरी यह सही बात है, भारत इस समय जिस टाइम में, ऐसा टाइम कभी नहीं आया है। आपके दौर में 2% ग्रोथ रेट थी, समय 7.8% की ग्रोथ रेट है। हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, बिगेस्ट मेजर इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग है। हम 4th बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, 3rd बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, 2nd बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन में 1 के देश हैं। और ये सही बात है, कांग्रेस जो कहती है कि हम तो ये सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हो सकता, बिल्कुल आप नहीं सोच सकते। आप नहीं सोच पाए थे कि इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाना है, क्योंकि 74 का जो पोखरण विस्फोट न्यूक्लियर पावर के नहीं कहा गया था, कांग्रेस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए कहा है, इसलिए ना कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन था और ना आपने कहा था न्यूक्लियर डिटरेंट की बात। आप सोच ही नहीं सकते थे कि हम जाके दूसरे देश में अटैक करके आ सकते हैं, न्यूक्लियर पावर संपन्न देश के अंदर भी हम, अगर हमारे यहां अटैक होगा तो हम करके आ सकते हैं। आप ये कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश बन के आएगा। बिल्कुल आप जिस सोच से सोचते हैं उससे निश्चित रूप से हम मैन्युफैक्चरिंग में हम हाई ग्रेड हाईएस्ट ग्रेड मोबाइल हैंडसेट के स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चर में वर्ल्ड के नंबर 2 देश होंगे, ये आप कल्पना नहीं कर सकते थे। और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये गलत नहीं है, ये वही मानसिकता है जो हमेशा भारत के बारे में कहती रही, आजादी के बाद कहा है डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी, उसके बाद उन्होंने कहा भारत सर्वाइव नहीं कर पाएगा, 70 के दशक में कहा भारत, 60 के दशक में कहा भारत भूखों मर जाएगा, उसके बाद यह कहा कि जिस दिन बीजेपी आ जाएगी उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। मगर सब कुछ जो सोचा रहे सोचते रहे वो कुछ और हुआ। इसलिए राहुल गांधी जी से मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि हुई है वही जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा, वैसे आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो उनके लिए कहना चाहूंगा मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अंत में मैंने सारी बातों का तीनों एंगल पर जवाब दिया है। नंबर 1 पॉलिटिकल एंगल, एंटी इनकम्बेंसी एंड हिज लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स ऑफ द लास्ट 60-70 ईयर। नंबर 2 द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट इलेक्शन कमीशन हैज सेड। नंबर 3 ऑन द मीडिया रिपोर्ट देयर इज नो कोट नो रेफरेंस इवन एन ऑफ द रिकॉर्ड एनी रेफरेंस ऑफ एनीबॉडी फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन एंड देन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट हाइप। और शायद इसीलिए मैं उनसे, एंड नंबर 4th अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट हिज ओन फैमिली, दैट्स व्हाई देयर 3 फैमिली मेंबर्स, 2 आर देयर इन लोकसभा विद द सपोर्ट और
0: okay, so that's the BJP's blistering attack back on the high-stake attack that Rahul Gandhi unleashed on the Election Commission and the Prime Minister. Quite a personal one there from Sudhanshu Trivedi, Member of Parliament of the Bharatiya Janata Party. We'll keep tracking because this has now completely heated up the entire political atmosphere in the country. Stay tuned. We are coming back with much more on the other side of this short commercial break.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। द बिगेस्ट डिफेंस लाइनअप डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ, नेवी चीफ एडमिरल स्वामीनाथन, एयर मार्शल तेजपाल सिंह, इंडिया'स टॉप मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक माइंड्स ऑन वन मेगा प्लेटफॉर्म, एनडीटीवी डिफेंस समिट 27 सितंबर, न्यू दिल्ली। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
3: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
4: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
5: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Show.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। द बिगेस्ट डिफेंस लाइनअप, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ, नेवी चीफ एडमिरल स्वामीनाथन, एयर मार्शल तेजपाल सिंह, इंडिया'स टॉप मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक माइंड्स ऑन वन मेगा प्लेटफॉर्म, एनडीटीवी डिफेंस समिट 27 सितंबर, न्यू दिल्ली। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
3: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
4: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। द बिगेस्ट डिफेंस लाइनअप, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ, नेवी चीफ एडमिरल स्वामीनाथन, एयर मार्शल तेजपाल सिंह, इंडिया'स टॉप मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक माइंड्स ऑन वन मेगा प्लेटफॉर्म, एनडीटीवी डिफेंस समिट 27 सितंबर, न्यू दिल्ली। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: ऑक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
3: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
4: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
5: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा, क्या स्वाद।

0: parents say that the caste-based slurs and threats were used. Sahil's father spoke with NDTV where he said that when he met Sahil on September 13, he complained about caste-based slurs. But on the other hand, there has been no record on the SCST cell of IIT Bombay. There's been no confirmed evidence of caste-based remarks so far. And well, joining me now live is Sahil's father, who is at Bombay's Mumbai's Azad Maidan. He's sitting on a hunger strike with his wife. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी. सबसे पहले आप कितनी देर तक, आप कब तक धरने पे बैठेंगे अभी और आपकी अभी क्या मांगे हैं?
1: अरेस्ट होने तक मैडम.
0: जी हमें बताइए राजेंद्र जी कि आपकी अभी क्या मांगे हैं, आप कब तक धरने में बैठने वाले हैं, क्योंकि आप चाहते हैं प्रोफेसर डूला और प्रोफेसर कादरे की अरेस्ट. तो अभी आप कब तक बैठने वाले हैं इस धरने में, हंगर स्ट्राइक में जहां बैठे हैं मुंबई के आज़ाद मैदान में?
1: सबूत आप वीडियो देख लीजिए, वो जो जो वंश ये लड़के की मांग ये कर रहे थे केदारेश्वर, तब आप वो लड़की जोर जोर से बोल रही है कि क्या कास्टिज्म हो रहा है, वो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मैडम. हाँ अब आप वो वीडियो क्लियर से देख लीजिए.
0: तो आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रखा है. आपकी बेटी की एक वीडियो कल रिलीज हुई है,
1: चार्ज कर रही है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता. हाँ वो मेरा मामला नहीं, वो क्राइम ब्रांच अच्छी तरह जांच करेंगी, वो जांच का मामला है, वो बोलेंगी वो फुटेज कैसा आ गया, वो जांच क्राइम ब्रांच करेंगी मैडम. हाँ
0: ठीक है जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी. एंड वेल टू टॉक मोर ऑन दिस आई एम नाउ बीइंग जॉइन्ड बाय प्रवेश बियानी, प्रोफेसर इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली. आई एम ऑल्सो नाउ बीइंग जॉइन्ड बाय डॉक्टर मिलिंद अवध, एसोसिएट प्रोफेसर जेएनयू इंगेज विद मॉडर्न कास्ट स्टडीज इन साउथ एशिया कास्ट पॉलिटिक्स एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स. थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन एनडीटीवी जेंटलमैन. आई वांट टू फर्स्ट स्टार्ट विद यू डॉक्टर अवध. There has perhaps been no evidence of caste-based remarks passed on to Sahil, no record on the SCST cell, and there's been no evidence so far. It has almost been a week by now. Do you think caste is being weaponized at this point of time?
2: I think instead of me talking about circumstantial reasoning, for instance, this incident and then police investigation part, I wish to make larger point.
0: Okay.
2: Which is about the nature of IITs, management institutions, those which are socially, culturally less tolerant, I would say, because the kind of number which we have had seen in the past is more than 120 students have done suicide. And the reason behind this is, I think, because of the lack of tolerance to accommodate or to provide space to the students from various cultural and social background coming to the elite institutions such as IITs. So I think it's really good to have the egalitarian nature or egalitarian workspace which is possible to develop through the larger consensus or goodwill of the larger stakeholder of the institution. So treating each and everyone equally once they are here is, I'll just take 1 minute, is also not very good treatment in my mind. So in my opinion, so apart from pedagogic or everyday interaction with students in classroom and so on, one need to actually really careful about their background. So one need to have emotional engagement with the students coming from various section of the society.
0: Right, Dr. Awad, but in this scenario, you have made a larger point saying that IITs are less tolerant towards perhaps kids who come from SC or ST background. There's been no proof. There's rather an SCST cell also, which has been formed in all IITs, so that if students feel something like that is happening to them, they can go and complain. But in this case, there has been zero track record of any discrimination meted on Sahil. If I can come to you, Mr. Biani, do you agree with that point that the IITs are less tolerant at this point of time? Because invoking the string